हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: दिया। सब असुर भय सब भय भीत बाया लड़ते इंद्रजीत की एक से एक प्रचंड प्रहार पर काम ना आए कोई भी। जब शस्त्र सारे हार गया तब ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया रखने ब्रह्मास्त्र का मान बजरंग बली ने खुद को बांध दिया। हुए पेश सामने रावण के बोले सभा के बीच में राम की जय। सारे महल में मच गया कोना हल बला कौन ये जिसको रतनिक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान है। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत जिनकी भारिया सीता माता को तुम छल से हक लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ जला दी जाए।
1: महाराज रावण यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

महाराज रावण श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: साजन के साजन साजन पुकारूं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज,
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: प्यार करते हो?
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं भोजपुरिया धमाल आरजी सोनी के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। भोजपुरी गानों की मस्ती और देसी अंदाज के साथ धमाकेदार मनोरंजन का रंग जमाइए और खूब एंजॉय कीजिए। अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑप्शन का। अपनी फरमाइश भेजिए और अपने पसंदीदा गानों को बजवाइए। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

अभी हमने के गाना सुनते हैं, इसन गाने के फरमाइश करे वाला रहन है आज जीवन क्या जी, काफी निमन गाना के फरमाइश रहे यहां के तरफ से। और यहां हम गाना के फरमाइश के बात करते हैं, काफी सारा फरमाइश हुआ। और यहां लाइव चैट में भी बानी प्रमुख जी, बानी गुलबाज जी, जुड़ल बानी रुवा सदे के भी बहुत बहुत स्वागत बटे। और बिना देरी के लिए अगला फरमाइश प्ले करम लेके रुवा सदे के बता दें कि कार्यक्रम में से भोजपुरी गाना के ही फरमाइश करी, कहे कि मैं बकैती भी भोजपुरी में होता तो गाना भी भोजपुरी सुनल दे। और बहुत लोग बाटे जे कि हिंदी गाने के फरमाइश करा था, अपन फरमाइश के चेंज कर दी, बदल दी। और फिलहाल ये अगला फरमाइश हम प्ले करें जो कि हमारे पास पहुँचल बानी कश्यप जी के, तो इंजॉय करी अपन गाना के, दूसरा ना करे जा।

0: bihar.masti.in।
1: अभी हमने क्या गाना सुना था? सन गाने की फरमाइश करे वाला रहनी अनिल कश्यप जी, और यहाँ की तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ था, चलिए सुन जाओ क्या कहते हैं यहाँ के।
2: आरजे सोनी जी नमस्ते, मैं अनिल कश्यप और रवत पता बा ये प्रोग्राम में हम जुड़ गई बनी और आदत बा हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में मुँह से निकल ल, खैर कौन बात ना, हमार गाना बजनी बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के।
3: जैसन तोहरी टोपी दरोगा बाबू वैसन हमारी ओढ़निया, जैसन तोहरी टोपी दरोगा बाबू वैसन हमारी ओढ़निया, तेहरे नाव कह दिले बानी आपन चढ़ल चवनिया, तोहरे नाव कह दिले बखनी बापन चढ़ल चवनिया, जैसन तेहरी टोपी दरोगा बाबू वैसन अपनी ओढ़निया।
4: बहुत ही प्यार प्रोग्राम चल रहा है, कैसन बानी आज सोनी जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ, एंड वेलकम टू रेडियो हॉस्टा फैमिली।

0: बागेश्वरी साल जी बानी, आर के रवि जी बानी, मंगेश देशमुख जी बानी, एम एस परमार जी बानी, बबलू अंजाना, रश्मि नामदेव जी बानी, आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और यहाँ अगला फरमाइश जहाँ हमने के पास पहुँचल बाटे, फरमाइश प्ले करें भंगाल से केहू ना जीतल बा, और गाना के फरमाइश करे वाला बानी सुभाष तिवारी जी। तो इंजॉय करिए अपन गाना के, प्ले हो चुकल बा राहुल गाना।
1: ए जी, एक बात बताई, ए दुनिया में सबसे अच्छा औरत के बा और सबसे खराब औरत?
2: हमार माई।
1: आ ए दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के बा?
2: तहार बाबू।
1: और सबसे खराब आदमी?
2: हमार बाबू।
1: अच्छा, एगो और बात बताई, ए दुनिया में सबसे आज्ञाकारी लड़का के बा?
2: तहार भाई।
1: और सबसे बदमाश लड़का?
2: हमार भाई।
1: अब वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
3: Mastic.in

0: बाबा।
1: अच्छा एगो और बात बताई, केकरा हाथ के खाना मिठाई लगे ला?
2: ताहरा हाथ के।
1: अब केकरा हाथ के मिर्चाई लगे ला?
2: भौजाई के।
1: सो क्यूट बेबी। एक और बात बताई।

अभी हमने के गाना सुना था इसमें सुभाष तिवारी जी के फरमाइश है, काफी बढ़िया गाना के फरमाइश। और यहाँ रिकू राय जी जुड़ल बानी, लिखा था सोनी जी राव प्रोग्राम में पहली बार जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रोवा के भी शो में। और यहाँ

अगला फरमाइश जो हमरा पास बाटे बरमुखी के बाद जैसी बानी लुधियाना पंजाब से, तो एंजॉय करिए अपन गाना के। और गाना बाटे निकला गेला रेशम के जलीदार ओढ़नी।

तभी हमने के गाना सुना था जैसे हम प्रमोद जी के फरमाइश रहे, काफी खूबसूरत गाना के फरमाइश उनका तरफ से रहे। और यहाँ मैसेज की बात करी तो मैसेज पहुँचल बटे, बागेश्वर निषाद जी बने लिखा था कि नाइस प्रोग्राम सुनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और अगला गाने के फरमाइश जो हमारा पास पहुँचल बटे, गाना के फरमाइश करे वाला बानी नाम बटेंगे कि एमडी फैजान आलम जी, बहुत बहुत स्वागत बटे थे इंजॉय करिए अपन गाना के चाल नवाबी खेसारी लाल के आवाज में, काफी खूबसूरत गाना गाना प्रेम।

मेरी बानी दिल्ली से रवा के भी बहुत बहुत स्वागत बटे। और गाना सुनने के बाद से फिर आज की आवाज़ में तब बिल्कुल और गाने के फरमाइश से हुई थोड़ा

प्रकृति की मिठास मिल के इस शो के और मैसेज करे वाला बानी मनीष पांडे जी गोपालगंज से बहुत बहुत धन्यवाद बटे रोवा के भी शो में।

तभी हमने के गाना सुनत रहे सन आर के रवि जी के फरमाइश रहे और यहाँ चैट में चैन पर मैसेज बहुत सारा पहुँचल बा और यहाँ पूजा भास्कर जी बानी प्रमुख जी बानी और एम एस परमार जी बानी लिखत रही बहुत बहुत स्वागत बा आपके आज सोनी जी आपके हमारे रेडियो हॉट स्टार के परिवार में आपके दिल से स्वागत करता हूँ और आज परमार रेडियो हॉट स्टार से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका भी और पूरी प्रोग्राम बातें हमें भोजपुरी में ही बात करी लो ज़्यादा अच्छा लगी और यहाँ काजल जहाज जी बाड़ी में पता नहीं कि सोनी जी कहाँ से गाने का फरमाइश कर सकता नहीं तो रुआ के जहाँ से सुविधा होके वही से कर सकता नहीं अपन रेडियो हॉट स्टार पर जाके

फिर अंसारी जी के दबे पाव यह नजरिया बचा के एंजॉय करिए अपन गाना के गाना प्ले हो चुका बार आओ।

अंसारी काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश हमने के एंजॉय करने सुन तक ही अंसारी जी के और हाँ अगला फरमाइश हम ये करें बिना देरी के लिए और अगला फरमाइश से पहले यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचल बा।

अरे काजल, झांसी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचल बा। काजल जी, अगर गाना के फरमाइश बाटे वॉइस में, तो गाना के नाम लिख के एक बार मैसेज कर दी। और यहाँ अगला फरमाइश जो हमरा पास पहुंचल बाटे, गाना के फरमाइश बाटे, बर्बादी हुई। और गाने के फरमाइश करे वाला बानी धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। तो इंजॉय करिए अपन गाने के। गाना प्ले हो चुकल बा, बर्बादी हुई, सिर्फ राज के आवाज़ में।

अभी हमने के गाना सुना टेंशन गाना के फरमाइश करे वाला रनिया धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और काफी ट्रेंडिंग में अभी गाना चला था सिल्की राज की आवाज में। और यहाँ मैसेज के बात करी तो पिंकू राय जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत करते लिखा था निकी सोनी जी भी प्रोग्राम बहुत अच्छा बाटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे रोवा के भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज बा अभिषेक तिवारी जी माने लिखा था कि हमरो गाना बाटे बजा देबू मैम, बिल्कुल बजा देम कहे ना बजाए मोई खातिर तबानी। और गाने की फरमाइश बात भेज दी गाने के फरमाइश। और यहाँ राजल झा जी के तरफ से भी गाने के फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करें फिलहाल, या अगला फरमाइश हम प्ले करें। मनीष पांडे जी जुड़ल बनी और यहाँ के तरफ से गाने के फरमाइश बाटे तोहरा वाला केहू जियला दुनिया के मेला में तो इंजॉय।

0: तभी हमने के करीना पांडे की आवाज में काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश सुनी असन, और गाने के फरमाइश करे वाला रनी है मनीष पांडे जी गोपालगंज से, और यहाँ पूजा भास्कर जी के तरफ से भी गाने के फरमाइश बा। थोड़ा इंतजार करी, राउर फरमाइश भी प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचल बा MD फैज आलम जी वानी, तो चलिए प्ले कर जाओ, सुना जाओ का कहते नहीं है के।
1: प्रोग्राम आप अच्छा कर रही हैं, सुपर से ऊपर मजा आ रहा है सुनने में। MD फैज आलम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बाटे, गाने के फरमाइश बाटे अभिषेक तिवारी जी के, तो एंजॉय करिए अपन गाने के, गाना प्ले हो चुकल बाटे।

और अभी गाना एंजॉय कनी सन अभिषेक तिवारी जी के फरमाइश रहे। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाटे, लिखा था नहीं कि हमरे एगो गाना बा बजा दी मैडम जी, और एमडी फैज आलम जी मानी तरह और गाना तो पहले ही प्ले हो चुकल बाटे। और यहाँ अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बाटे पूजा भास्कर जी मानी, और यहाँ की तरफ से गाने के फरमाइश बाटे धामी रंग साड़ी। तो एंजॉय।

0: शास्त्री
1: काफी बढ़िया गाना के फरमाइश और गाना के फरमाइश करे वाला बानी पूजा भास्कर जी। और मैसेज भी पहुंच चुका है, लिखा था नहीं, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि सोनी मैम गुड आफ्टरनून और भी जुड़ गए बानी। रंजीत कुमार जी बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में जुड़े खातिर एक। और यहाँ मैसेज बा अभिषेक तिवारी जी बानी लिखा था नहीं कि राउत प्रोग्राम कब कब बात। हमारा प्रोग्राम हर शनिवार के दोपहरिया के 1:30 बजे से रही और सिर्फ शनिवार स्पेशल रही दोपहरिया 1:30 बजे से। और ये अगला गाने के फरमाइश के जो हमारे पास पहुंचल बाटे गाने के फरमाइश करे वाला बानी पिकू राय जी। और गाने के फरमाइश बाटे लाखों है दीवाने तेरे, तो एंजॉय करी अपन गाना के। और गाने के फरमाइश जो बा प्ले हो चुकल बा।

प्रोडक्शन पिकू राइजी के फरमाइश रहे और काफ़ी बढ़िया गाना के फरमाइश। और अगला फरमाइश जो हमनी के पास पहुँचल बाटे, जाए चंदा ले आवा खबरिया, बागेश्वर निषाद जी बानी महाराज के उत्तर प्रदेश से। तो चली रहो गाने की फरमाइश जो बा प्ले हो चुकल बा, एंजॉय करिए अपन गाना के।

0: अभी हमने के गाना सुनने सन बागेश्वर निषाद जी के फरमाइश रहे जाए चंदा ले आओ खबरिया, और यहाँ पिक्कू राय जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचल बात चली सुनल जाओ का कहते नहीं आगे।
1: थैंक यू सुनी जी सॉन्ग प्ले करे खातिर, सभी दोस्त के भी ये सॉन्ग पसंद आई हुई और ये टाइम हमको बहुत अच्छा लगला। हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में ये तू क्या पहचाने, लाखों है दीवाने तेरे।
0: पिकुराज जी राउर आवाज काफी धीरे रहे, तो जब भी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी थोड़ा तेज आवाज में भेजी ताकि सबके समझ में आवे और हमरा के भी समझ में आवे। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुंचल बाटे काजल झा जी के तरफ से, तो चलिए वॉइस मैसेज पहुंचल बा सुनल जाओ कौन गाना के फरमाइश बा यहाँ के तरफ से।
2: नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसन बानी सोनी जी रउआ? हम बहुत रउआ के इंतजार करत रही हाँ कि कब से रउआ के प्रोग्राम आई, तो इंतजार खत्म हो गए बाटे, तो हमरों के एगो गाना सुना दी। गाना है

0: करेंगे। आई गाना हम सुना देव, सबसे पहले मिठू मियाँ जी के, अमन जी के, वंशिका जी के, सोनी जी अपने की सुना देव, जितना दोस्त लोग सुनो तनी सबके सुना देव
1: जी। बिल्कुल राहुल गाने के फरमाइश बटे।

0: तभी हमने के गाना सुन ले सन, काजल झा जी के फरमाइश रहे, काफी बढ़िया गाना के फरमाइश। और यहाँ पिंकू राय जी के तरफ से मैसेज बैठे लिखा था कि फर्स्ट टाइम वॉइस भेजा हूँ, नेक्स्ट टाइम अच्छा से भेजूंगा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट टाइम से ही सेकंड टाइम होला। और यहाँ अभिषेक तिवारी जी बानी लिखा था कि आप कहाँ से बानी, हम बस यही जैसे बानी और ज्यादा दूर से नहीं की। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज बांटे, और बागेश्वर निशा जी की तरफ से मैसेज बा लिखा था थैंक यू सो मच। और अगला फरमाइश हम प्ले करे, अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुंचल बांटे चॉकलेट चेहरा, और गाने की फरमाइश करे अलवानी रंजीत कुमार जी, तो एंजॉय करी गाने के अपन गाना पे फरमाइश जोन बा प्ले हो चुकल बाटे।
1: गाना उल्ट

0: रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to radio।
1: और अभी गाना प्ले कर ले रही है रंजीत कुमार जी के, लेकिन यहाँ के गाना जोन बटे लगा तटे डाउनलोड नहीं के भाई। तो चलिए अगला गाना के फरमाइश प्ले करता नहीं हम, और यहाँ अगला गाना के जोन फरमाइश हमारा पास पहुँचल बटे पिपरा के भूत और सनी शर्मा जी के तरफ से गाने के फरमाइश बटे। इंजॉय करिए अपन गाने के, राहुल गाने के फरमाइश जोन बा प्ले हो चुकल बा पिपरा के भूत।

अभी हमने के गाना सुनी सन गाना के फरमाइश करे वाला रनी है सनी शर्मा जी, काफी खूबसूरत गाना के फरमाइश पिपरा के भूत। और ये अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुंचल बा रंजीत जी, कहते एंजॉय करिए अपन गाना के चॉकलेट चेहरा।

तभी हमने के गाना सुनने सर अजीत कुमार जी के फरमाइश रहे और अगला फरमाइश बिना देरी के लिए प्ले करें। जॉन की पहुंचल बा हमरा पास रुबीना नाज जी के तरफ से आज अखिए से करे दबात। काफी खूबसूरत गाना के फरमाइश बा, एंजॉय करिए अपन गाना के। गाना प्ले हो चुका है।

रवि हमनी के गाना सुनने सन रुबीना राज जी के काफी खूबसूरत गाना आज अच्छे से करे द बात। और यहाँ एमडी गुलबाज जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और अब आज के शो से हमरा के दी सब रुआ सब जाए की इजाजत, फिर मुलाकात हुई अगला सैटरडे दोपहर या के 1:30 बजे भोजपुरी धमाल के साथ। फिलहाल जाते जाते हम तरफ से एक बार गाना सुन ली लो, और ये गाने के साथ दी इजाजत, फिर मुलाकात हुई।

Gaana, and it's 2 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं. रेडियो गाना बजाते रहो दिल से. You're listening to Radio Gaana and it's 3 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और आ चुका हूं, हाजिर हो चुका हूं लेकर स्टार अंतरा मस्ती का ये मस्ती भरा शो और सभी का वेलकम करते हैं। सभी से पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, और आप सुन रहे हैं अंतरा मस्ती। एक्चुअली दोस्तों बहुत से दोस्त जो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी दोस्तों का। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफू भाई है, सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और जुड़ने वाले हैं हमारे ये सुरिंदर पाल जी, ये भी जुड़ चुके हैं पंजाब से, वेलकम करते हैं आपका। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे व्हाट्सएप में, चूंकि आज मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाला हूं, तो रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी रवि मोहड़े जी। और मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी, एमडी जलील जी, ज्योति खटवड़े जी, और संजय साहनी जी, और संध्या पटेल जी, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने के साथ, और इस गाने से स्टार्ट होगा आज का। और हाँ, राजेश गौतम जी की आज धर्मपत्नी यानी कि सविता गौतम जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो जी हजारों साल और हमेशा आपके साथ बनी रहे। फिलहाल इस गाने से आगाज करता हूँ प्रोग्राम का, एंजॉय कीजिए। आज का फर्स्ट राउंड

और निशांत ट्रैवलर्स वेलकम करते हैं आपका। तो मैं बता दूं कि यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर, जो है 9135841232 पे।

0: बिल्कुल मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, यानी नाम है सुनील कुमार जी बांका बिहार से, और ज्योति खटवड़े जी हैं, और हमारे राधा कृष्ण गोप जी हैं, और विष्णु जी हैं, संगीता मुलकर जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, अजय भगत जी हैं, काजल झक्का जी हैं, और गजानंद जी हैं, एमडी जलील जी हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम सुनील कुमार जी बांका बिहार। बहुत बहुत वेलकम है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया भैया, आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं, हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं। मौसम भी चकाचक एकदम जबरदस्त है। थोड़ी देर पहले मतलब एक घंटा पहले बारिश हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल बारिश खत्म है अभी फिलहाल।
1: तो अभी हम NCR में हैं, दिल्ली NCR में, तो थोड़ी सी हल्की फुल्की मतलब बारिश की फुहारें आई थी, उसके बाद बंद हो गई है। दिन भर तो वैसे तपिश और गर्मी और उमस भरी का ये सामना कर रहे हैं अभी NCR में, दिल्ली में।
0: हाँ, तो वहाँ तो गर्मी हमेशा रहती है ना, ज्यादा से ज्यादा।
1: जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: ये बात तो है। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुने हैं आज आप?
1: जी हम चुने हैं आज दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
0: क्या बात है?
1: तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती। जी अमन भैया।
0: हाँ, और क्या बात है, आज तो छक्का लगा दिया पहले ही बॉल पे, है ना?
1: जी जी जी जी, ये आपके, ये हमारे यहाँ आज थोड़ा सा नेट बाबा की मेहरबानी है हमारे ऊपर।
0: कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए गाने को, सुनवा दिया।

बिल्कुल, और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आप इस अंतरे के शब्दों को ध्यान से सुनिए, जो भी शब्द आपको सुनाई देते हैं और उन शब्दों से जो भी गाना आपको याद आता है वो गाने के बोल आप मुझे लिख कर भेज दें 9135841232 पे, यानी व्हाट्सएप करना है सिर्फ। ओके,

मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है किन का? संगीता अम्बुलकर जी का। अच्छा, और गजानंद जी का, ज्योति जी का, अशोक कुमार जी का, बीरबल बघेल जी का, बिरजू जी का, इस और हमारे अशोक देशमुख जी का, और विष्णु जी का, सर्वेश भगत जी का, काजल झका जी का, राधा कृष्ण कोप जी का, खोखर विश्वास जी का, संजय सानी जी का, एमडी जली जी का, दीपक जी का, संजय जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज आया। माय गॉड, तो सीधे कॉल लगाते हैं संगीता अम्बुलकर जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। संगीता जी कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ।
0: वेलकम जी, और बहुत दिन बाद आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था आप तो भूल गई हैं साहब, बिल्कुल, क्योंकि
1: नहीं नहीं सर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बताया तो था मैंने।
0: जी जी, आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं क्या करूँ ना,
1: थोड़ा ठीक
0: दिल है
1: कि
0: मानता नहीं ना।
1: अब ठीक लग रहा है उनको, तो अच्छा लग रहा है। तो
0: आप सबको मैं मिस करता हूँ ना, अभी वो मनीषा
1: जी जी
0: मतलब यानी कि मतलब शर्मा जी भी,
1: मनीषा शर्मा
0: वो भी गायब है, और वो मतलब एकाती थी, क्या नाम है उनका, तो नाम ही भूल गया हूँ मैं।
1: कौन?
0: वो राजलक्ष्मी जी, वो भी गायब।
1: राजलक्ष्मी जी,
0: वो भी नाहिद अंसारी जी, वो भी गायब है, मतलब बहुत से दोस्त गायब है। ये चीज है, ये चीज है। खैर बताइए,
1: हम कहीं नहीं जा रहे छोड़ के।
0: धन्यवाद। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: आंखों आंखों में बात होने दो,
0: मुझको अपनी बाहों में सोने दो, है ना, यही ना। ओके
1: जी जी,
0: एंजॉय कीजिए। और नाम लिया और मनीषा शर्मा जी हाजिर हो गई। बहुत बहुत वेलकम है आपका मनीषा शर्मा जी।
2: आंखों आंखों में,
0: हाय,
2: आंखों आंखों में बात होने दो,
3: मुझको अपनी बाहों में सोने दो
0: ना।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो इसी अंतरे में जो भी शब्द आप सुनेंगे उन शब्दों से जो भी गाना आपको याद आएगा जल्दी से लिखकर मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पे 9135841232 पे। देर कीजिएगा तो देर हो जाएगी, है ना।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ किनका, मैं देख लूं जरा सा। राधा कृष्ण गोप जी का, ज्योति खटवाड़े जी का, एंड सुनील कुमार जी का, सुरेश भगत जी का, खोखर कुशवाहा जी का, राजेश गौतम जी का, एंड विष्णु जी का, काजल झक्का जी का, संध्या पटेल जी का, जलील जी का, दिगंबर जी का, अजय भगत जी का, पूजा भास्कर जी का, निशांत राय जी का, रवि लोढ़ी जी का, अनिल कश्यप जी का, दीपक जी का, गजन जी, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज आया। माय गॉड, फिलहाल कॉल लगाएंगे।

0: राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: आ रही।
0: ओके जी, अब बताइए जी, और कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, बहुत मजे में सर।
0: जी अच्छी बात है, आप हमेशा ऐसे ही आप दोनों मजे में रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और भी दोस्त आपके गायब हैं बहुत दिनों से, वो तुलसीदास महतो और एक और जो थे, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सभी गायब हैं। देवेंद्र तादी जी, हाँ हाँ, और भी बहुत से दोस्त बाकी हैं, मतलब सभी गायब हैं, कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब। लेकिन हाँ, आप बने हुए हैं, आपका पूरा
1: जी सर, बहुत बढ़िया सर।
0: जी तो बताइए, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: सर हम हमराज फिल्म का लाए, दिल की ये यार जीव है कोई दिल रुबा मिले।
0: ये निकाह फिल्म का गाना है, एंजॉय कीजिए, प्ले कर दिया।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। इस अंतरे को ध्यान से सुनिए, इन और इसमें जो भी आएंगे शब्द, उन शब्दों को ध्यान से सुनते हुए उन पर गाने भेजिए मुझे 9135841232 पे। ओ माय गॉड, इसके बाद अंतरा शुरू होगा, मैं गलती बता दिया हूँ ना। फिलहाल थोड़ा सा

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज इस बार ज्योति खंडवड़े जी का आया हुआ है। ओके जी, ज्योति जी के बाद हमारे ये सुनील कुमार जी बाका बिहार वाले जी का है और आरती तिवारी जी जुड़ चुके हैं। वेलकम है एमडी जलील जी है, संजय सानी जी है, सर्वेश बगा जी, बीरबल बघेल जी, राजू राजेश कुमार जी, दिगंबर जी, मनीषा शर्मा जी, खोखन विश्वास जी, विष्णु चंद्र जी, मिशाल अंगा जी, काजल झका जी, दीपक जी और दीपक गायकवाड़ जी मतलब, और सुरेंद्र पाल जी, पूजा भास्कर जी, रूपचंद जी, गजानंद जी, अनिल कश्यप जी, राधा कृष्ण जी, निशांत जी और अभी लोधी जी, मतलब बहुत से दोस्त। सीधे कॉल लगाएंगे हम

0: ज्योति खड़बड़े जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपसे, बहुत दिनों बाद बात हो रही है मेरी। तो जी, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: दिले की मंत्र।
0: हाँ, गाना बहुत ही प्यारा है, मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और बहुत दिन बाद आई हूँ आपका। बहुत बहुत दिल से वेलकम, एंजॉय कीजिए गाने को।

बिल्कुल दिल है कि मानता नहीं है, और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे। और ये भी बता दूं दोस्तों कि जो जो दोस्त अधिक से अधिक यानी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, अगर उनका नंबर नहीं भी आएगा तो मैं उनको स्पेशल कॉल जरूर करूंगा।

बहुत यकीन है और दिल है कि मंथन ये। और सबसे पहले मैसेज काजल झक्का जी का है, और उनके बाद आरती तिवारी जी हैं, राजू राजेश कुमार जी, ज्योति खटवड़े जी, संजय सानी जी, संगीता अम्बुलकर जी, खोखन विश्वास जी, गजन सुलकार जी, सुनील कुमार जी, राधा कृष्ण गोप जी, विष्णु चंद्र जी, रूपचंद जी, बरजू जी, सर्वेश भगत जी, जलील जी, राजेश गौतम जी, रवि लोधी जी, मिशालंगा जी, बीरबल बघेल जी, अनिल कश्यप जी, दीपक जी, दिगंबर जी, पूजा भास्कर जी, मतलब

0: दिल है कि मानतनी। काजल झका जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतराम मस्ती में। कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं एकदम। आप बताइए। हाँ अब बताइए अंतरा, अंतरा के मैं तो बात ही करना भूल गया। अंतरा मस्ती में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप?
1: अभी मैं तुम्हें बिठा के करूंगी मैं बंदा।
0: तो आप तो गाती बहुत अच्छा है ना, थोड़ा गुनगुनाइए ना।
1: मैं कहाँ गाती
0: हूँ। अरे आप तो गाती हैं, मैं जानता हूँ ना।
1: हाँ, मैं नहीं गाती, वो तो भोजपुरी गाना गा दी थी, लेकिन गाना थोड़े आता है मुझे।
0: अच्छा ओके, कोई बात नहीं, चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना। एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे 9135841232 पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है।

ट्विटर पर जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो किन का है जरा देखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मेरे पास मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है गजानन सोलकार जी का, ओके जी। और उसके बाद ये राजू राजेश कुमार जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, और संजय साहनी जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, महक जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, एंड सतीश जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। दिलबर जी हैं, एमडी जलील जी हैं, रवि लोधी जी हैं, कोकन विश्वास जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सॉरी राजेश गौतम जी हैं, और हमारे ये सुरेंद्र पाल जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, दिगंबर जी हैं, और बीरबल बघेल जी हैं, राधा कृष्ण को माई गॉड सभी का नाम मैं नहीं ले सकता सॉरी। बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास, सीधे कॉल लगाता हूँ मैं गजानन सोलकार जी को।

0: गजानन सुनकार जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ सर जी, आप कैसे?
0: जी हम तो बहुत स्मार्ट हैं, आप बताइए।
1: बस मैं भी ठीक हूँ।
0: ओके जी, अच्छी बात है। तो बहुत दिनों बाद आपसे बातें हो रही है मेरी अंतरा मस्ती में।
1: हाँ अंतरा मस्ती बात हो रही है सर जी।
0: बिल्कुल, तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे? अंतरक मतलब अंतरक के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए?
1: हाँ, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे।
0: अच्छा। ओहो, ये तो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी।

और मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो मनीषा शर्मा जी का है, और हमारे गजानंद जी का है, ज्योति खटवड़े जी का है, दिलबर आलम जी का है, और हमारे ये राजू राजेश कुमार जी का है, फोकन विश्वास जी का है, सोनू गौतम जी का है, और संगीता अम्बुलकर जी का है, एंड यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, आरती तिवारी जी हैं, निशांत राय बोले नहीं सर आप हमेशा गलती करते हैं, आपकी बहुत बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी हैं, आप गलतियाँ अब आपको लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा गलती ना करें प्लीज़ ओके। और एक साहब और भी जुड़ चुके हैं, आरोही यानी कि पोटदार जी इनका भी है, और सतीश यानी और सतीश जी हैं, और विशाल अंकल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, रूपचंद जी हैं, जलील जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, बीरबल भगत जी हैं, ये रवि लोधी जी हैं, कजल झका जी, दिगंबर जी, दीपक जी, विष्णु जी, ओ माय गॉड मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत से दोस्तों के मैसेजेस हैं मेरे पास, सीधे मैं कॉल लगाता हूँ।

0: बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी, और बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है,
1: वेलकम है, वेलकम है।
2: नमस्ते अमन जी, एक मिनट मेरा कॉल आ गया।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मतलब इन मेरी आवाज इन मुझे ही सुनाई दे रही है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
2: जी अमन जी,
0: हाँ और कैसे हैं आप?
2: हेलो,
0: हाँ जी हेलो, और कैसी हैं आप?
1: हाँ जी हेलो, और कैसी हैं आप?
0: मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, रिपीट। या अगर स्पीकर पे हैं तो प्लीज स्पीकर ऑफ कर दीजिए।
2: नहीं अमन जी, वो कॉल आ रहा है बीच में बार बार।
0: अच्छा वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, अपना गाना बता दीजिए मुझे जल्दी से।
2: नमस्ते बोल रही पहले तो आप।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: और कैसे हो आप?
0: मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ, आप बताइए।
2: मैं ठीक हूँ अमन जी।
0: ओके, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाई हैं?
2: बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए।
0: अच्छा अच्छा,
2: मैं लाई हूँ जब तक रहे तन में जिया।
0: ठीक है, आपका कॉल आ रहा है इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, सीधे गाना प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।
2: ओके ओके।

जब तक रहे।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। तो इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे कोई भी गाना लिखकर भेज सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9135841232 पे।

जब तक रहे तन में जिया, और गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है। सबसे पहले भेजने वाले हैं हमारे सोनू गौतम जी, गजानन जी हैं, दिगंबर जी हैं, राजू राजेश कुमार जी, अनिल कश्यप जी, सुनील कुमार जी, जितेंद्र जी, ज्योति खटवड़े जी, बरजू जी, रूपचंद जी, सतीश जी, मिशाल अंगद जी, सर्वेश भगत जी, पूजा भास्कर जी, खोकन विश्वास जी, जलील जी, और ये कौन साहब है हमारे हुकुम चंद जहांगीर जी, अच्छा जी ये भी आ गए हैं, वेलकम है दिलबर आलम जी, बीरबल बघेल जी, दीपक जी, और ये विभूति भूषण जी, काजल झक्का जी, राधा कृष्ण, माय गॉड, सभी का मतलब नाम लेना मेरे लिए यानी मुश्किल हो रहा है, सॉरी सो मच। और यहाँ पे अगला कॉल, मतलब सीधे मैं इनको कॉल लगा लेता हूँ सोनू गौतम जी को।

0: हेलो
1: सोनू गौतम जी, बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
0: नमस्कार अमन भाई।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए और कैसे हैं आप?
0: कैसे हैं
1: जी?
0: बढ़िया है सर, आप अपने बताएं।
1: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं।
0: वो तो पता है सर, हम भी डीपी देखते हैं हम।
1: ओके, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
0: आज अंतरा के शब्दों से लाए हैं, जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे।
1: अरे रेडियो हॉट स्टार पे होंगे और कहां होंगे।
0: रेडियो गाना पर भी हो सकते हैं सर।
1: जी जी जी, एंजॉय कीजिए।
0: थैंक यू सर।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे। व्हाट्सएप करनी है सिर्फ

और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है दिलबर आलम जी का, और उनके बाद हमारे ये सुनील कुमार जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, दिगंबर जी हैं, और मनीषा शर्मा जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, खोकन विश्वास जी हैं, सतीश जी हैं, एमडी जलील जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, रवि मुहार जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, रवि लोढ़ी जी हैं, और बीरबल बघेल जी हैं, राधा कृष्ण गोपी हैं, काजल झकार जी, विष्णु जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। ओ माय गॉड, सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। और यानी कि प्रीति रायदास जी जुड़ चुके हैं, ये सिवान से बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका प्रीति जी। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम आपको दिलबर आलम जी को।

0: वेलकम ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। हाँ दिलवा आलम जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी दिलवा आलम जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हम अच्छा सर, आप कैसे हो?
0: अरे मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ,
1: वो लग रहा है सर आपकी बातें।
0: जी बताइए, और अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: ऐसा जादू डाला रे।
0: हाकी का एंजॉय कीजिए
1: जी।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरात। इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास इस बार फिर सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है सोनू गौतम जी का, और एंड यहाँ पे सुनील कुमार जी का, राजू राजेश कुमार जी का, ज्योति खटवड़े जी का, खोकन विश्वास जी का, और बीरबल बघेल जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, रवि मोहर जी का, रूपचंद जी का, दिगंबर जी का, और अनिल कश्यप जी का, जितेंद्र सिंह जी का, मिसाल अंगद जी का, सर्वेश भगत जी का, मनीषा शर्मा जी का, गजानंद सलोकार जी का, ओ माय गॉड कितना नाम लूँ मैं यार, बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं मेरे पास। फिलहाल सीधे कॉल लगाता हूँ मैं सोनू गौतम जी को एक बार फिर से। कहाँ गए सोनू गौतम जी? सबसे नीचे था। भाई सोनू गौतम जी क्या बात है, दोबारा बहुत जल्दी नंबर लग गया आपका।
1: जी सर।
0: बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना लाए हैं इस बार?
1: अंतरा के शब्दों से हम लेकर आए हैं इस बार तेरा दिल मेरे पास रहने दे, हंगामा मूवी का।
0: ओके एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।
1: थैंक यू सर।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में, इस अंतरे को ध्यान से सुनिए, इसमें जो भी आपको वर्ड मतलब सुनाई देंगे, जो भी आपको शब्द मिलेंगे, उन उनमें से किसी एक आप सबसे गाना लिख कर भेज दीजिए मुझे 9135841232 पे, व्हाट्सएप करना सिर्फ।

0: और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है बीरबल बघेल जी का। ओके बीरबल बघेल जी का कॉल लगाऊंगा मैं। और राजू राजेश कुमार जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, दिगंबर जी हैं, खोकन विश्वास जी, ज्योति खटवाड़े जी, मनीषा शर्मा जी, दिलबा आलम जी, संगीता मुर्गर जी, जितेंद्र सिंह जी हैं, और गजेंद्र सरकार जी, मिशाल अंगद जी, रूपचंद गोयल जी, एमडी जलील जी, पूजा भास्कर जी है, और ये विभूति भूषण जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और काजल झक्का जी, राधा कृष्ण गोप जी, सर्वेश भगत जी, और यानी कि प्रीति रायदास जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं। मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास, लेकिन फिलहाल कॉल लगाऊंगा बीरबल बघेल जी को। बीरबल बघेल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंतरा मस्ती में। कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम इस वक्त बिंदास हूं और आपके प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहा हूं और सुन रहा हूं एक से एक श्रोता मित्रों की फरमाइश है।
0: अच्छी बात है, बस सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहिए दिल से और वो भी अमन के साथ, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों के बाद मैं भी जुड़ा हूँ, व्यस्त हो गया था, लेकिन आज सुबह से जुड़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद जुड़ने के लिए। बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: ओ, गाना मैंने जो भेजा है सर, वही प्ले कीजिएगा।
0: आप बता दीजिए कौन सा गाना।
1: देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ थोड़ा।
0: देख लीजिए
1: गाना है तेरे चेहरे से
0: नजर नहीं हटती वो वाला।
1: क्या बात है सर।
0: ओके सुनवा दिया सर, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सो मच।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 91 35 84 12 32 पे।

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है गजानन सलोकार जी का, सोनू गौतम जी का, ज्योति खटवाड़ी जी का, अनिल कश्यप जी का, राजू राजेश कुमार जी का, संगीता मुलकर जी का, जितेंद्र सिंह जी का, फोकन विश्वास जी का एंड सुनील कुमार जी का, दिगंबर जी का, एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, ये विभूति भूषण चरण जी है, अच्छा ओके जलील जी हैं एंड यहाँ पे मिशाल अंगद जी हैं, रवि मौर्य जी हैं और सर्वेश भगत जी हैं और निशांत रायबोले जी हैं, विष्णु जी हैं और शिल्पा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी शिल्पा जी आपका। तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं हम इनको।

0: तेरे
1: नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है गजानन सलोकार जी।
0: हाँ दूसरी बार नंबर लग गया सर,
1: दूसरा बार भी नंबर लग गया आपका, तो बताइए इस बार कौन सा गाना चुनकर लाए हैं?
0: रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देख तेरी मांग में सिंदूर सजा के
1: जी अच्छा लगता है सिंदूर।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। और आप लोग बिल्कुल यानी कि ट्राई कीजिए, हिम्मत ना हारिए, नंबर तो आएगा ही आएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है ना।

और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है अनिल कश्यप जी का। ओके, और उनके बाद कौन है बता रहा हूँ, यहाँ पे संगीता अम्बुलकर जी, राजू राजेश कुमार जी, ज्योति खटवड़े जी, यहाँ पे सोनू गौतम जी, गजानंद सरकार जी, विभूति भूषण जी, रूपचंद जी हैं, मिशाल अंगद जी हैं, मोहम्मद असलम जी हैं और दीपक जी हैं, और ये खोखन विश्वास जी, दिगंबर जी हैं। जलील जी आप इन मैसेज यानी ऑडियो मैसेज मत कीजिए प्लीज। और रवि महड़े जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, काजल झक्का जी हैं, एंड यहाँ पे सरोज भगत जी हैं, और मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल सीधे

0: अनिल कश्यप जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
1: थैंक यू सर, और नमस्ते आपको।
0: नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत जैसे आप, मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ, बहुत जैसे ट्राई कर रहे हैं आप, अभी जाकर लगा नंबर आपका।
1: जी जी, इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ मतलब बहुत ट्राई किए, लेकिन लास्ट

0: में नंबर आ ही गया
1: जी। तो वही तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए, है कि नहीं?
0: यस सर। हाँ हाँ हाँ। और बताइए कैसा चल रहा है सब?
1: एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, इस भी पूछने वाली बात है?
0: नहीं नहीं अच्छा बात है, मतलब आज का तो शो में और धमाल मचा, भोजपुरी भी चला था।
1: हाँ भोजपुरी भी चला था आज।
0: हाँ
1: आरजे सोनी जी ने किया था। उन
0: आरजे सोनी जी को भी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी आ गई हैं तो और अच्छा लग रहा है
1: जी। बिल्कुल। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
0: बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे जुदा होके, वादा करो तुम जाने से पहले
1: जी,
0: फिर मिलेंगे सनम।
1: हाँ बहुत से दोस्तों ने इस गाने को भेजा है आपके साथ साथ, उनकी भी डिमांड पूरी हो रही है। एंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे। और 8:30 बजे स्टार्ट होगा सेकंड राउंड, तो उसके लिए तैयार रहेंगे आप सब।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ इस बार ज्योति खटवाल जी और प्रीति राय देश जी, दिलबा आलम जी और सर्वेश भगत जी, रूपचंद जी हैं, दीपक जी हैं और विभूति भूषण जी, राजू राजेश कुमार जी, मिसाल अंगद जी हैं, गजन असलकार जी, मनीषा शर्मा जी हैं, एम डी जलील जी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं एंड यहाँ पर रवि मोहड़ जी हैं और भी विष्णु चंद्र जी हैं, दिगंबर जी हैं, काजल झका जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, सुनील जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त। माय गॉड, फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं ज्योति खटवड़े जी को एक बार फिर से। बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से ज्योति खटवड़े जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकलाई है?
1: तेरे लिए है जी।
0: तेरे लिए है हम जी, है ना, वीर जाना का।
1: हाँ। ओके। हाँ।

और यहाँ से शुरू होगा अंतरा। इस अंतरे में जो भी शब्द आएंगे उनको ध्यान से सुनिए और जिन जो भी शब्द आपको अच्छे लगे उन शब्दों में से किसी एक शब्द से आप अपने गाने को लिखकर मुझे भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है मिशाल अंगद जी का, और ये प्रीति रायदास जी का, और ये निशांत रायबोले जी का, गजानंद जी का, ज्योति जी का, अनिल कश्यप जी का, संगीता मुर्गा जी का, दीपक जी का, जलील जी का, सर्वेश भगत जी का, मोहम्मद असलम जी का, रवि लोटी जी का, रुबीना नाथ जी का, गोपाल इन पड़ीदार जी का, मनीषा शर्मा जी का, राजू राजेश कुमार जी का, खोकन विश्वास जी का, दिगंबर जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, पूजा भास्कर जी का, शिल्पा जी का, और बहुत से दोस्त का है। फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं हम इनको, मिशाल अंगद जी को।

0: मिसाल अंकल जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार नमस्कार अमन सर जी, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा नंबर आने वाला है, बिल्कुल इस गाने के लिए तो बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि मेरा नंबर आने वाला है।
0: देखिए जी, जब आपने भेज दिया है सबसे पहले तो आपका नंबर क्यों नहीं आएगा ये मुझे बताइए।
1: सबसे पहले भेज दिया था और ऐसे ही मैं भक्त गाना सुन रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपने मेरा नाम लिया, और जैसे ही फोन आया तो मैं इतना मुझे एकदम आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैं
0: आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, जो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले मैसेज करते हैं हम उन्हें कॉल जरूर लगाते हैं, है ना, वही मेरा काम है, क्योंकि गाना तो सुनाना है ना, है कि नहीं? इसमें मुझे बेईमानी करके क्या मिलने वाला है बताइए आप।
1: नहीं, आपका यही तो कार्यक्रम सबसे फेवरेट कार्यक्रम है और सबसे अच्छा कार्यक्रम है आपका
0: जी। बिल्कुल, थैंक यू।
1: मेरा तो ये तो मेरा सबसे फेवरेट कार्यक्रम है। आज दोपहर का भी आरजे वंशिकाश जी भी मेरी बात हो गई थी, उस पे भी मेरा नंबर आया था।
0: अच्छा,
1: उसने भी बहुत बहुत अच्छा गाना सुनाया उसने, वंशिकाश जी।
0: अच्छी बात है, बस ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर जी, कि जो जो जो पौने पांच का जो कार्यक्रम होता है आरजे आकांक्षा का
0: जी,
1: तो उस कार्यक्रम का टाइम अगर आपने बढ़ाने की कोशिश की तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीके से सादर करते हो और गाने भी बहुत अच्छे तरह से सुनवाती है, तो उसका टाइम अगर जोड़
0: जी। मैं बता दूं कि उनके पास बहुत ही समय कम है, उनका वो कीमती समय मैंने उनसे मांगा है, वो कीमती समय वो अपना देती है मुझे यहाँ पे, है ना, तो इसलिए अभी ज्यादा समय तो उनके पास है ही नहीं कि वो समय दे पाए, है कि नहीं? वो भी बहुत ही मुश्किल से वो समय दे पाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है।
1: लेकिन आपका तो मैं बिल्कुल मुझे अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने उनको लिया है इस कार्यक्रम के लिए, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उनका कार्यक्रम
0: जी। हमारे यहाँ जो भी आरजे हैं वो सभी अनुभवी हैं और बहुत अच्छा शो करते हैं हमें छोड़कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। आज का दोपहर का भी जो भोजपुरी तड़का था ना, वो भी बहुत अच्छा था, और भोजपुरी तड़का हफ्ते में एक दिन होना ही चाहिए, क्योंकि आपके भोजपुरी गाने बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बता दीजिए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: आज मैं यही गाना सुनना, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, जिंदगी बन गए हो तुम, यही गाना मैं सुनना चाहता हूँ।
0: जिंदगी बन गए हो तुम, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद।

और यहाँ से शुरू हो गया अंतरा। और जो भी शब्द आपको पसंद आते हैं उस शब्द पे आप गाने लिखकर भेज दीजिए मुझे 9135841232 पे, यानी 9135844।

और बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास पहुंचा है। सबसे पहले दीपक जी का है, अनिल कश्यप जी का है, गजानन जी का है, और खोकर विश्वास जी का, संगीता मुर्गा जी का, मनीषा शर्मा जी का, ज्योति खड़बड़ जी का, रुबीना ना जी का, जलील जी का, दिगंबर जी का, मोहम्मद असलम जी का, एंड सर्वेश भगत जी का, मिशाल अंगद जी का, निशांत रायबोले जी का, रवि मोहर जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, गजानन ये गोपाल यानी के फरदार जी का है, और पूजा भास्कर जी का, और प्रीति रायदास जी का, और दिलबा आलम जी का, मतलब सभी का सीधे कॉल लगाते हैं।

0: दीपक कुमार गायकवाड़ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंतरा मस्ती में।
1: सुनने वाला कहा, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी माला मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूँ।
0: बहुत बहुत वेलकम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और अंत भला तो सब भला, नंबर लग ही गया फाइनली आपका।
1: अरे हाँ, मैं तो घबरा ही गया था कि क्या टेंशन आ गया है कार्यक्रम में।
0: ये
1: बिल्कुल लगे रहना पड़ता है,
0: ये एक्चुअली इसमें तो आपको लगे रहना पड़ता है। ये तो हफ्ता में एक दिन होता है ना। अब ये आपका आखिरी इसमें लग गया ना, अब यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है 8:30 बजे।
1: अच्छा, तो सर दूसरी बार भी हम ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बार नंबर लग गया
0: आप ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि 3 बार कम से कम आपका नंबर लग सकता है।
1: अच्छा, ऐसा है ना? ठीक है सर,
0: बिल्कुल आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो पहले ये बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: जी हाँ, मैंने वो सुना है, वो गाना है,
0: देख लीजिए मैसेज अपना।
1: गाना सर मुझे देखना है,
0: देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि जो आपने जिस गाने का डिमांड किया है ना, बहुत से दोस्तों ने उसी गाने को भेजा है लगभग। यानी कि
1: जान, ओ मेरी जान,
0: बिल्कुल
1: तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल।
0: ओके,
1: धन्यवाद सर, सुना दीजिए,
0: एंजॉय कीजिए, सुनवा दीजिए।

0: बिल्कुल, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब, यानी कि राउंड टू सेकंड राउंड। ओके तो
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9135 84 12 32।

0: बिल्कुल, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं अगला अंतरा के ये वाला सेकंड आउट। और ये रहा सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: दिल का बंधन ऐसा है, हाल ना पूछो कैसा है, जान हमारी जाती है, याद तुम्हारी आती है, आंख से आंसू बहते हैं, प्रेमी जागते रहते हैं।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास बहुत से जवाब आए हैं, लेकिन मेरे पास जो सबसे सही जवाब है सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है अंचल कुमार जी का। अंचल कुमार जी को सीधे कॉल लगाता हूँ, मैं बातें करता हूँ इनसे, फिर बताता हूँ जवाब क्या है।

0: अंचल कुमार जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: जी सर।
0: और कैसे हैं? और कैसे हैं आप भाई?
1: सर
0: जी,
1: सर
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई क्या बात है, पहले ही बाल पर छक्का लगा दिया आपने आते के साथ ही।
1: जी सर, आता है पहली बार भेजे सर अभी।
0: हाँ बिल्कुल, आपने और बिल्कुल आप ही का जवाब सही आया है, बाकी जितने भी दोस्तों का नाम है सबका जवाब गलत है। तो जवाब बता दीजिए क्या है?
1: प्यार किया नहीं जाता,
0: प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म आ गले लग जा का वो गाना है, मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ।
0: आ गले लग जा का?
1: जी सर, मैं आशिक हूँ।
0: ओके ओके,

बता दूं कि आज के जो गाने के शब्द में दिए गए हैं वो है ये प्यार, यानी प्यार वाले ही गाने आज आपको अंतरे मस्ती के सेकंड राउंड में दिए जाएंगे। जिस शब्द में, मतलब जिस गाने में आएगा प्यार, वही गाना आपको बताना होगा।

बिल्कुल मैं आशिक हूँ, लेकिन ये रहा सवाल नंबर दो। अभी हैंग कर दिया है, अभी नहीं पूछ सकता।

0: गाने का अंतरा।
1: आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो।

ओके जी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबसे पहले तो भाई हमारे ये संतोष कुमार जी हैं और रूपचंद जी हैं और रुबीना नाथ जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं जी, और गजानन सलोकार जी हैं, ओम नारायण जी हैं, अंजल कुमार जी हैं, ज्योति खरवड़े जी हैं, एंड यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं और रवि मोहड़े जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, अशोक पाल जी हैं, खोकर विश्वास जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, एम डी जलील जी हैं और सुनील चौहान जी हैं, आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं और सबसे पहले

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं संतोष कुमार जी।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, और कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा सर।
0: अच्छी बात है, तो जवाब बता दीजिए, क्या जवाब है?
1: आपके प्यार में हम सवरने लगे, राज पिक्चर का गाना।
0: बिल्कुल सही कहा। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे
1: सर? आप अपने पसंद का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: कोई भी गाना सुना दूं? फिलहाल मैं यही गाना सुना रहा हूँ, काजल, काजल तेरी आंखों पे काजल, है ना? इंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल, ध्यान से सुनिएगा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: ये फूलों का मौसम बरसों बाद आया है, यादों की खुशबू को अपने साथ ले आया है। तेरी पायल कहीं छनकती है, तेरा आंचल कहीं लहराता है।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

जो भी दोस्त भेज रहे हैं प्लीज अपने गाने भी जरूर भेजेंगे, वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाना लोड होने में यहाँ समय लग रहा है प्लीज, इसलिए अपने गाने के भी बोल जरूर लिख के भेजें अपने जवाब के साथ साथ।

बिल्कुल, मेरे पास सबसे पहला जवाब आया था यहाँ संजय साहनी जी का, इनको मैं कॉल लगाने वाला हूँ। और इनके पास बिल्कुल मेरे पास सही जवाब रवि मोहरे जी का भी सही था और गजानंद जी का भी सही था। और बता दूं यहाँ पे ये यहाँ पे संगीता मुनकर जी, ज्योति खटवड़े जी, एमडी जलील जी और संतोष कुमार जी, इन सब का जवाब बिल्कुल सही था। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम संजय सानी जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है संजय साहनी जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी सर,
0: आवाज आ रही है मेरी?
1: जी जी जी जी जी जी सर।
0: और संजय साहनी जी बहुत दिनों बाद आए हुए हैं अंतरमस्ती में।
1: जी जी सर, थोड़ा सा तबीयत ना साथ साथ है।
0: अभी आपकी तबीयत कैसी है?
1: हाँ, मिला जुला के ठीक है सर।
0: मिला जुला के मतलब कुछ प्रॉब्लम है अभी भी?
1: जी जी, फीवर से थे, ग्रसित थे सर विद इन 10-12 दिन से। लेकिन बराबर मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा था, जैसा मैंने मैसेज भी किया था सर, लेकिन सुकून मिलता था सुनने में और मैंने उसका ले रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे आपके कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है, बस आप लोग सुनते रहिए, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सुनते रहिए जितना दिल हो, मतलब जितना हो सके, है ना। और मैं एक यहाँ पे लगाने वाला भी हूँ कुछ ऐसा कि यानी कि कौन दोस्त मतलब कितना सुनता है और यानी कि किस एप्लीकेशन से सुनता है। एक्चुअली एक VR मतलब रेडियो नाम का जो एप्लीकेशन है वो ये बताता है कि हम लोग का यानी TRP मतलब कितना हो रहा है। तो अगर उससे आप सुनेंगे मतलब और उसका अंतिम स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे भेजेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि आपने कितना देर सुना है और आपका हर दिन का वो यानी कि काउंट किया जाएगा, मतलब कि आपने आज कितना सुना, फिर यानी कल कितना सुना, फिर अगले दिन आपने कितना सुना, उसको यानी कि वहाँ पे काउंट करने के बाद उसका एक यानी लॉटरी निकाला जाएगा और उसमें जो सबसे ज़्यादा उससे यानी कि सुनेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। मतलब
1: जी जी जी जी जी सर, उतना तो सुन नहीं पाता हूँ सर, क्योंकि जब समय मिलता है।
0: आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं जो अधिक से अधिक।
1: हाँ सर, जैसे एक मैं तो ऐसा 2-4 नाम को बराबर देखता हूँ सर, जब भी रेडियो खोलता हूँ वो तो लगता है कि जितने सारे ब्रॉडकास्ट आपका प्रोग्राम होता है सब में कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट रहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसा तो देख रहे 2-4-5-10 आपका। जी जी जी,
0: ऐसा कुछ हम लोग यानी कि सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चीज है। जी जी जी, लोगों का और ज्यादा झुकाव आएगा रेडियो हॉटस्टार की तरफ, बहुत अच्छा सोच है सर।
0: बिल्कुल, तो बताइए अभी आप अंतरा इसका जवाब वो क्या है वो पहले मुझे बता दीजिए।
1: ये सर, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ,
0: इलाका का गाना है। जी बिल्कुल सही समझा,
1: इलाका का गाना था, याद एक पल में मैं 100 बार करता
0: इलाका का। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आप सुनना क्या चाहते हैं वो बता दीजिए।
1: ये सर था ये ना, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
0: की। जी मुझे भी।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आंखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, कसम है तुझको मेरी सजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है वो ये लिख के प्रीति रैदास जी का है, और सोनू गौतम जी, रूपचंद जी, अंचल कुमार जी, खोखन विश्वास जी, संजय साने जी, रुबीना नाथ जी, पूजा भास्कर जी, एमडी जलील जी, रवि मोहड़े जी, संतोष कुमार जी, ज्योति खरवड़े जी, श्याम जी, गोपाल परिदार जी, अनिल कश्यप जी, विभूति भूषण जी, मनीषा जी, संगीता जी, अशोक जी, मतलब बहुत से दोस्त सीधे कॉल लगाते हैं इन प्रीति

0: हेलो रेडियो हॉटस्टार में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्रीति जी कैसी हैं आप?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है मेरी?
1: फर्स्ट बार जुड़ी हूँ।
0: अच्छा, फर्स्ट बार जुड़ी भी हैं। ओके, तो बहुत बहुत वेलकम है।
1: सुन भी रही हूँ।
0: अच्छा, सुन भी रही
1: हूँ। फर्स्ट बार सुन भी रही हूँ।
0: चलिए अच्छी बात है। तो आपको ये कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, फर्स्ट बार?
1: बहुत अच्छा।
0: ओके, चलिए थैंक यू सो मच, आपको ये पसंद आया। तो इसका पहले जवाब बताइए, वो कौन सा गाना था जो आपने भेजा है?
1: एक दिल है मेरा, दिल है मेरा, दिल ही तो है।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो और सुनना क्या चाहती हैं आप?
1: यही सॉन्ग सुना दीजिए।
0: अच्छा, यही सुना दूं? चलिए सुनवाता हूँ। एक दिल है यानी तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: जानी तमन्ना जानी अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा,
0: क्या बात है,
2: देखा है तुमसा मैंने नहीं।
0: सही बात है।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: संगीता अम्बुलकर जी, बहुत बहुत वेलकम एक बार फिर से। नंबर लग गया आपका फाइनली। वेलकम जी। तो जवाब बता दीजिए पहले मुझे।
1: वो तेरा मेरा प्यार है अमर।
0: बिल्कुल, मेरा फेवरेट गानों में से एक है ना।
1: यस यस, आपका फेवरेट सॉन्ग। बैकग्राउंड में भी आपका यही म्यूजिक बजता रहता है हमेशा।
0: और आप क्या सुनना चाहती हैं ये बताइए।
1: मेरा वो मन मूवी का है ना, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे।
0: आपने ये गाना भेजा है, जरा
1: दूसरा दिया है क्या? मैंने खूब सारे गाने भेजे ना, कब से तो खेल रही हूँ मैं।
0: आपने भेजा है मेरा सनम सबसे प्यारा है।
1: अच्छा, ओके ओके,
0: ये मैं पहले
1: वाला सुना दीजिए। हाँ हाँ, चलेगा।

0: ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना

0: बिल्कुल, मेरा सनम, मेरा सनम सबसे प्यारा है। और सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया हुआ है सोनू गौतम जी का, एंड यानी कि संतोष कुमार जी का, अशोक पाल जी का, और यानी प्रीति रायदास जी का, और ओम नारायण जी का, दिगंबर जी का, रूपचंद गोयल जी का, ज्योति खटवड़े जी का, पूजा भास्कर जी का, रवि मोहड़े जी का, मनीषा शर्मा जी का, खोखन विश्वास जी का, और समीर राज जी का, गजानन सुलकार जी का, संजय सानी जी का, और ये विष्णु चंद्र जी का, आमना खान जी का, और संगीता अम्बुलकर जी का, और सुरेंद्र पाल जी का, अनिल कश्यप जी का, गोपाल जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है। सीधे कॉल लगाता हूं मैं हमारे सोनू गौतम जी को, और आज ये आज के बने हुए विनर।
1: हेलो
0: जी, सोनू गौतम जी बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए, और कोई भी गाना सुन सकते हैं।
1: थैंक यू सर। कोई और गाना नहीं सुनूंगा सर, जो लिख के भेजा है ना वही सुनवा देना।
0: अच्छा, वही सुनवाता हूँ। तो आपने आगे पुलिस का जवाब बताइए।
1: इसका जवाब है कितना प्यार है तुझे रब ने बनाया, राजा हिंदुस्तानी मूवी से।
0: बिल्कुल, और सुनना क्या चाहते हैं?
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा

0: और ये रहा किसी गाने का अंतरा वाला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
4: ओ रानी के कानों में झुमके की जोड़ी है, पैरों में चांदी।

बिल्कुल, दुनिया में आए हो तो लव करो। मेरे पास मैसेज तो वैसे बहुत सारे आ चुके हैं। सबसे पहला मैसेज खोखर विश्वास जी, ज्योति खटवड़े जी, आमना खान जी, रूपचंद जी, मनीषा जी, पूजा भास्कर जी, गजानंद जी, अशोक पाल जी, संतोष कुमार जी खो, और कहाँ गया यहाँ पे ये रवि महाड़े जी और दिगंबर जी और विष्णु जी और श्याम जी, मतलब बहुत से दोस्त। फिलहाल इन्हें कॉल लगाते हैं।

0: खोकन विश्वास जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आप कैसे?
0: अरे हम तो एकदम बहुत ही स्मार्ट हैं, आप बताइए।
1: आप तो स्मार्ट है ही।
0: थैंक यू सो मच। तो बहुत देर से ट्राई कर रहे हो, माय गॉड, आपने कोई गाना नहीं छोड़ा है लगातार। आप मैं देख रहा हूँ आपका मैसेजेस पूरा, मतलब फाइनली नंबर लग गया आपका, मुझे आपको स्पेशल कॉल करना नहीं पड़ेगा अब, है ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो,
1: आ रही है सर।
0: आ रही है तो ठीक है, बोलिए। तो पहले जवाब बता दीजिए।
1: जवाब है वो न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, वो और DDLG का गाना था
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: हो गया है तुझको प्यार से बिना।
0: ओके ठीक है, फिलहाल बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना तो हम आपके फेवरेट में से गाना सुनना चाहेंगे।
0: बताइए, बता दीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो,
1: नेट स्लो चल रहा है।
0: जी जी, अब बताइए गाना कौन सा है आपका?
1: मोहब्बत जो तुमसे हुई है, मुक्का फिल्म का।
0: मोहब्बत जो तुमसे हुई है वो पहली है और आखिरी है?
1: जी जी जी।
0: मोहब्बत जो तुमसे हुई है, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, मोहब्बत जो तुमसे हुई है वो पहली है और आखिरी है।

0: और कल का संडे स्पेशल सुनना ना भूले। फिलहाल
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, छुप के करे जो वफा, ऐसा मेरा यार है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहला तो किनका है, आमना खान जी का है। ओके, और आमना खान जी के बाद हमारे अशोक पाल जी हैं, रूपचंद जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, ज्योति जी हैं, संतोष कुमार जी, एमडी जलील जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, और अमन कुमार जी जुड़ चुके हैं, ये बेगूसराय बिहार से। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं अमन कुमार जी आपका, और आप तो हमारे नाम वाले हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल आमना जी को लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंतरम अस्थि में।
1: शुक्रिया जी, जीत जीत।
0: और कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, मैं बस में जा रही हूँ अभी घर पे अपने।
0: अभी कहाँ है मतलब? कहाँ?
1: अभी मम्मी के पास थी, मम्मी के पास से अपने घर जा रही।
0: अच्छा, मम्मी के पास थी और
1: जालना से औरंगाबाद जा रही।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: घंटे का ही सफर है।
0: तो यानी मम्मी के पास है या मतलब वहाँ से निकल चुकी है?
1: निकल चुकी हूँ, बस में हूँ मैं। बस में आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और जा रही।
0: अच्छा, अगर वहाँ पर रहती तो मेरा भी उनको सलाम बोल देती कम से कम।
1: कल तो बताया आपको, लेकिन आप बहुत बिजी थे।
0: जी जी, खैर कोई बात नहीं। पहले जवाब बता दीजिए मुझे।
1: जवाब पहला पहला प्यार।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: अल्लाह दुहाई फिर बेवफाई, सलमान खान जी वाला।
0: फिल्म का नाम?
1: रेस थ्री।
0: रेस टू या थ्री?
1: सलमान
0: का है। ओ माय गॉड, मुझे लग रेस टू का है। फिलहाल मैं रेस थ्री का डाउनलोड कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया। वेलकम जी।

0: ओके, फिलहाल मैं सवाल करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे स्पेशल कॉल भी करने हैं ना।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जागी जागी सो, सोए सोए जागू, मिलने की तुझसे दुआएं मांगू। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगी ये दुनिया तेरे बिन।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल।

0: ओके, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले यानी प्रीति रायदास जी का एक बार फिर से, और राहुल पासी जी का, और यहाँ पे खोकन विश्वास जी का, अशोक पाल जी का, ज्योति खड़बड़ जी का, रवि मोहन जी का, रुबीना नाथ जी का, गोपाल जी का, दिगंबर जी का, संतोष जी का, गजानंद सरकार जी का, एम जलील जी का, विष्णु जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज है। फिलहाल कॉल लगाते हैं प्रीति जी को। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति रायदास जी, कैसी हैं?
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और दूसरा बार आपका नंबर लग गया, क्या बात है, तो जवाब बता दीजिए मुझे जल्दी से।
1: तुझे ना देखूं तो सहन मुझे आता नहीं, फ्रॉम द मूवी रंग।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। और क्या सुनना चाहती हैं
1: आप? यही सॉन्ग सुना दीजिए।
0: ओह माय गॉड, तुझे ना देखूं तो चैन, यानी कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है ना?
1: जी,
0: कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। हालत मेरी वो जानता, धड़कन मेरी पहचानता, अपनी भी चाहत का इकरार करता।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है रुबीना नाथ जी का, राहुल शुभ जी का, अशोक पाल जी का, दिगंबर जी का, विष्णु जी का, ज्योति खड़वर जी का, एम डी जलील जी का, रवि मोहड़े जी का, खोखन विश्वास जी का, गजानंद सलकार जी का और राजीव जी का, और यहाँ पे रोहित जी का और अमन कुमार जी हैं और संतोष कुमार जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं और यानी कि विपिन त्यागी जी हैं, एम डी साहिद जी हैं और भी बहुत से दोस्त हैं, किनका किनका नाम लूँ? तो सीधे कॉल लगाता हूँ रुबीना नाथ जी को। बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी आपका अंतरा मस्ती में। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं, एकदम चकाचक।
1: हाँ वो तो दिख ही रहा है।
0: हाँ बताइए।
1: वो तो आवाज से ही लग रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले जवाब बता दीजिए मुझे, क्या जवाब है?
1: जवाब है मुझसे मोहब्बत का इजहार करता।
0: हाँ यानी काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
1: हाँ हाँ यही है।
0: ओके तो आप क्या सुनना चाहते हैं ये बताइए मुझे।
1: ये सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
0: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ओके सुनवा दीजिए, एंजॉय कीजिए।

0: हमें हर घड़ी आरजू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम।
1: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। और मेरे पास सबसे पहले जवाब पहुंचा हुआ है वो राहुल शुभ जी हैं, और इनके बाद अशोक पाल जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, और हमारे ये सुरेंद्र पाल जी हैं, गजेंद्र सरकार जी हैं, रवि महड़े जी हैं, और गोपाल परिदार जी हैं, नहीं इनका गलत है सॉरी, और यहाँ पे अमन कुमार जी का भी जवाब सही है, और संतोष कुमार जी का भी जवाब सही है, लेकिन कॉल तो भाई राहुल जी को लगाने वाले हैं हम। भाई राहुल जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, कैसे हैं?
1: ठीक है, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, फाइनली नंबर आ ही गया, क्या बात है।
1: हाँ जी आ जा गया।
0: तो जवाब बता दीजिए, क्या है जवाब?
1: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका, और क्या सुनना चाहते हैं वो भी बता दीजिए।
1: मुझे मैंने प्यार किया का सॉन्ग सुना देना आप।
0: मैंने प्यार किया क्या?
1: हाँ वो अलग गाना है।
0: बताइए।
1: तुम लड़की हो आया मौसम दोस्ती के लिए, ऐसा गाना है।
0: हाँ हाँ ओके, एंजॉय कीजिए, गाना सुना दिया।

0: सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, ये दिल तो पागल है, ये दिल दीवाना है, इस दिल को क्या हो गया ये खुद नहीं जाना है, ये दिल तो बेकरार है, ये दिल बेचैन है, इस दिल को चैन कहाँ ये खुद नहीं जाना है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और आज की विनर बन चुकी हैं वो थर्ड विनर ज्योति खटवड़े जी, बहुत बहुत बधाई हो इनको। और फोकन विश्वास जी का है, गोपाल जी हैं, राजीव जी हैं, रवि भार जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, विष्णु जी हैं, अशोक पाल जी हैं। कॉल लगाते हैं ज्योति।

0: और बहुत बहुत बधाई हो, ज्योति खरवड़े जी आज बन चुकी हैं विनर। बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे, अब कोई भी सुन सकती हैं।
1: जी तेरा मेरा है प्यारा अमर।
0: अच्छा, तेरा मेरा है प्यार अमर, मेरा फेवरेट गाना।
1: हाँ, वही सुना।
0: तेरा मेरा है प्यार अमर, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: हाँ, थैंक यू,
0: वेलकम। और ये गाना

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंदरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक और थर्ड राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और सबसे पहले स्पेशल कॉल लगाते हैं सर्विस भगत जी को। सर्वेस भगत जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है स्पेशल कॉल में।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बताइए सर्वेस भगत जी, आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं?
2: ऐसे बैठे हुए हैं, बिछाना में हैं।
1: अच्छा, और रेडियो नहीं सुन रहे हैं?
2: सुन रहे हैं।
1: मुझे लगा कि नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। फिलहाल बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: फिल्म है बेटी, गाना एक मीठी नजर फूल बरसा गई।
1: अच्छा चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद के गाने को, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: जी थैंक यू सर।
1: और मैं उन दोस्तों का स्पेशल कॉल करने वाला हूँ जितने दोस्तों ने यहाँ पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनका नंबर नहीं लगा, तो लगाता हूँ कॉल एक एक करके। मैं 10:30 बजे तक हूँ आप सबके साथ।

0: अगला कॉल लगाते हैं अशोक पाल जी को।
1: बाहर आ गई ओ मेरी दुनिया में जैसे बाहर आ गई।
0: अशोक पाल जी बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: और बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
2: मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा
0: जी,
2: मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: ओके जी, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आ। एंजॉय कीजिए इस गाने को, है ना।
2: हाँ प्रिंस सर जी, मेरे रूठे है ना थोड़ा, मैं बिना बताए अच्छा। आ गया।
0: कोई बात नहीं है, अब इन मान जाएंगे, है ना।
2: हाँ जी, उन्हीं को डेडिकेट है।
0: एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, इस गाने का जवाब हमारे पास यानी तैयार है, वो भी यानी के कायनात जी की पसंद पर। इस गाने को मैं सुनाऊंगा जरूर। उसके बाद फिर स्पेशल कॉल लगाने वाला हूँ।

0: और इसी बात पर क्या आजा तेरी याद आई, एंजॉय कीजिए यानी कायनात जी इस गाने
1: को। इंसान का एक तराजू।
0: हाँ हाँ क्या बात है।

0: और विष्णु चंद्र जी बहुत बहुत आपका वेलकम है इस स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार। ठीक है।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
1: मेरा प्रॉब्लम सिर में दर्द हो रहा था, मेरा चश्मा खराब हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत हो रहा था।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। और ये जो यानी कि प्रोग्राम है ना, ये कुछ अलग टाइप का होट का मतलब हट कर होता है कि नहीं, इसलिए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो बता दीजिए आप आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: अमिताभ बच्चन का गाना है चली जाना तू पान की दुकान पे,
0: 3:30 बजे।
1: हाँ जी,
0: तो लगता है कि आप भी किसी को वहाँ पे टाइम दिए हुए है ना, यानी पान की दुकान पे बुला रहे हैं किसी को।
1: टाइम तो नहीं, हमारा तो टाइम जाने का होने वाला है पर
0: नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आपने किसी को टाइम दिया हुआ है कि चलिए ना तुम पान की दुकान पे 3:30 बजे, किसी को बुला रहे हैं मतलब?
1: अब ये जो ही समझ लो दोस्तों के लिए।
0: कोई बात नहीं, गाने भी एंजॉय कीजिए, मैंने प्ले कर दिया। ओके,
2: ध्यान किधर है?

0: यानी पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है स्पेशल कॉल में। कैसी हैं आप? हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी।

0: सकूं।
1: वेलकम बैक, और अगला कॉल लगाते हैं रवि मोहड़े जी को। रवि मोहड़े जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
2: आप सुनाइए सर, आप कैसे हो?
1: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट है एकदम।
2: स्मार्ट तो हो यार। बहुत बढ़िया। नहीं, ऑलरेडी हो। बातों से भी, दिल से भी और चेहरे से भी, सब चीज बताइए सर।
1: थैंक यू सो मच। आप सुनाए। थैंक यू जी। बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग की दुआएं हैं।
2: ईश्वर आप पे ऐसी कृपा बनाए रखे, हम लोगों का सभी का आशीर्वाद आपके साथ में है, बड़ों का
1: धन्यवाद देते हैं। तो स्पेशल कॉल में आज क्या सुनना पसंद करेंगे रवि जी, रवि मोहड़े जी?
2: जी सर, आपकी पसंद से सुनवा दीजिए। वैसे तो मैं तीन गाने भेजा था आपको, तीन में से कोई पसंद करवा दीजिए। एक क्लासिकल गाना है सर, मैं बहुत दिनों से आप रेडियो हॉटस्टार पे शायद ही बजाऊंगा, शायद नहीं बजा। बदरा जब छाए तू, बहुत याद आए।
1: अब तो मुझे याद नहीं है।
2: बदरा जब छाए

0: बहुत याद आए, मैं रिसेंड करूं आपको?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गाना ढूंढ ही लेता हूँ, है कि नहीं?
0: जी आप ढूंढ लो, नहीं तो फिर आपकी पसंद से सुना दो। मेरे तो हिसाब से आपकी पसंद बहुत लाजवाब होती है। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको भी लेट हो रहा है सर, है ना? तो
1: फिलहाल
0: बजने जा रहा है
1: फिलहाल
0: हम।
1: फिलहाल इस गाने को सुनिए और मैं इसके बाद अपनी पसंद का एक गाना सुनवाता हूँ आपको, ठीक है? फिलहाल
0: जी जी
1: ये सुनिए पहले।

और जब मेरी पसंद की बात होती है सच में मेरे जहन में बहुत सारे गाने आने लगते हैं जो मेरा फेवरेट गानों में से एक है। तो सबसे पहले जैसे कि एक वो है यानी कि नया प्यार है नया एहसास है, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक मेरे मन का मौसम बदलने लगा, ये भी गाना मुझे बेहद पसंद है। तो फिलहाल मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, बिल्कुल। और ये गाना मुझे इतना पसंद है मैं आपसे क्या बताऊं। तो इसी गाने को मैं सुनवा रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी पसंद आपको पसंद आएगी। बिल्कुल एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: एमडी जलील जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
1: सर अच्छा हूँ, और आप सुनाइए कैसे?
0: हम तो बहुत ही अच्छे हैं एकदम,
1: और बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम।
0: अच्छा जी, अच्छी बात है। फिलहाल क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सर जी, कुमार सानू का गाना है हर पल चाहे मेरा दिल, गुदगुदी मूवी।
0: हर पल चाहे, एक मिनट, हर पल चाहे मेरा दिल। हर पल चाहे मेरा दिल, ओके। और फिल्म का नाम है
1: गुदगुदी मूवी। गुद
0: जी बिल्कुल, मुझे गाना यानी मिल गया और मुझे गुदगुदी भी होने लगा।
1: सर आप बहुत क्यूट लगते हो।
0: ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए एंजॉय कीजिए, गाने प्ले कर रहा हूँ मैं आपका।

0: अगला कॉल लगाते हैं दिगंबर जी को।
1: मुझको वचन दो, मिलना है तुमको मुझसे तो यूं।
0: दिगंबर जी बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में, कैसे हैं?
2: हेलो, नमस्कार अमनकर जी।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दिगंबर जी, बताइए
2: कैसे हो अमनकर जी?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: ठीक है, आपकी दुआएं।
0: अच्छा जी, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
2: गाना सुनवा दो, अब गाना तो आज के तो सॉन्ग एक से बढ़कर एक सफर रहे आज के सॉन्ग तो। आज हम एक अमरेश्वरी का ही गाना सुन लेते हैं, मासूका मासूका
0: मासूका सुनिएगा।
2: नहीं, मैं ऐसी मासूका।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल कॉल लगाते हैं अगला। गोपाल परिदार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
1: जी सर, अच्छे हैं।
0: ओके, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आप कैसे सर?
0: मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ, अच्छा हूँ, झक्कास हूँ
1: जी सर,
0: चकाचक हूँ।
1: वो गाना सुना दीजिए, आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर।
0: हाय, आंखें तेरी बाहों में,
1: जी
0: आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, सुनवा दिया
1: जी सर।
0: एंजॉय कीजिए।

0: जी विभूति जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद सर।
0: ओके जी, तो आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आखिर तुझे आना है जरा देर लगेगी, यलगार फिल्म का गाना।
0: आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बिल्कुल देर तो लगेगी, लेकिन वो देर यानी कि कहते हैं ना कि भले यानी कि देर आयत और दुरुस्त आयत है ना।
1: जी जी, आज पहली बार आपकी तरफ से कॉल आया, बहुत दिनों से हम मतलब ये तो कर ही रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नाम तो आता रहता है लेकिन कॉल पहली बार।
0: बिल्कुल, एक्चुअली आप उस समय से पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन आपका नंबर एक नंबर में नहीं आ रहा था है ना, थोड़ा पीछे हो जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल कॉल जिंदाबाद है ना।
1: जी,
0: आपका गाना सुनवाते
1: हैं। जी, ठीक।
0: और आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं?
1: नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम सोते समय भी सही लेकिन याद है आपका।
0: क्या करूं,
1: मतलब हम अपनी वाइफ से भी बोल ही रहे थे कि हो सकता है कॉल आ जाए वहां से अमन जी का।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये कोशिश मतलब रहती है कि मैं सबको कॉल लगाऊं, लेकिन हर किसी को कॉल लगाना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी तो है कि नहीं।
1: जी जी जी जी जी,
0: फिलहाल आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सुनाते हैं आपके पसंद का ये गाना, बहुत ही प्यारा गाना है, इंजॉय कीजिए।
1: ओके सर, ओके।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी।
3: और आखिरी कॉल करने वाला

0: ये रोमानी अंदाज छोड़ो जो कहना है।
1: आरजे वंशिका जी, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और कैसी हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
2: मैं सुनना चाहूंगी पलक मुच्छल जी की आवाज में भी है और अरमान मलिक जी की आवाज में भी है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा।
1: कौन तुझे यूं प्यार करेगा। ओके, तो आप अरमान मलिक वाला सुनना चाहेंगी या पलक मुच्छल वाला?
2: कोई सा भी सुनवा दीजिए।
1: ओके, एंजॉय कीजिए।
2: थैंक यू सो मच।

और इसी गाने के साथ आप मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पे यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक, इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है। कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।